0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: NHK World Japan की उर्दू सर्विस है। हमारी ये नशरियात आप शॉर्ट वेव्स, सेटेलाइट और इंटरनेट पर सुन सकते हैं। ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज़ पर सुनी जा सकती हैं। मजीद तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट है nhk.jp/urdu। उर्दू नशरियात का आगाज हुआ चाहता है, हमारे साथ रहिएगा।

दार औसत से तकरीबन 3 गुना हो चुकी है। सूरज की रोशनी के घंटे भी मामूल से कम रहे। महकमे मौसमियात के हुकाम किसानों पर जोर दे रहे हैं कि फसलों का खास ख्याल रखें। चीन की हुकूमत ने अमरीका के साथ अपने हालिया तजारती मुजाकरात की तफसीलात जारी कर दी हैं। उसने कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती जंगबंदी में 2 माह तक की तौसी की जाएगी। ये उस बात की तस्दीक है जिसका अमरीकी फरीक पहले ही ऐलान कर चुका है। चीन की वजारत तजारत ने पीर के रोज़ कहा कि उसने अमरीका के साथ तजारती जंगबंदी को 10 जनवरी तक तौसी देने पर इत्तफाक राय किया है। ये जंगबंदी 10 नवंबर को ख़त्म होने वाली थी। वजारत ने कहा कि वो इस साल के अख्ताम से कबल आला सतही इकतसादी और तजारती बातचीत के जरिए मजीद तोसी से मुतालिक हल तलाश कर रही है। उसने ये भी कहा कि दोनों फरीक तकरीबन 30 अरब डॉलर मालियत की दरामदी अशिया पर महसूलत कम करने पर मुतफिक हुए हैं। इसके जुमरे में आने वाली तकरीबन 90% मसनूआत पर महसूलत पसंदीदा तरीन मुल्क की शरहों तक कम कर दिए जाएंगे। अमरीकी तजारती नुमाइंदे के दफ्तर ने अमरीका चीन बोर्ड ऑफ ट्रेड के लिए कायम करने का तरीक़ार इतवार के रोज जारी किया था। इसमें कहा गया है कि बोर्ड की निगरानी अमरीकी वजीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट और अमरीकी तजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रेयर करेंगे और चीन की जानिब से स्टेट कौंसल के नायब वजीर आजम हा ली फेंग दीगर चीज़ों के अलावा महसूलत कम करने पर बातचीत करेंगे। शुमाली कोरिया के एक सिफारतकार ने कहा है कि जौहरी हथियार रखने वाली रियासत के तौर पर मुल्क की हैसियत नाकाबिले तंसीख है। शुमाली कोरिया के नायब वजीर खारजा किम सोंग योंग ने यह बात पीर के रोज़ अक्वामे मुत्तहदा की जन असम्बली से खिताब में कही। किम ने अमरीका, जापान और जनूबी कोरिया को उनके सैफरी की सलामती तावुन पर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा, खास तौर पर जजीरा नुमा कोरिया और उसके आसपास DPRK के खिलाफ मुसलसल दुश्मनी और अमरीका और उसके हवारियों की बढ़ती हुई फौजी महाजराई की वजह से गुज़िश्ता साल से मुख्तलिफ सतह पर शदीद अदम इस्तेहकाम और पहले से कहीं ज्यादा बढ़ती हुई कशीदगी का सामना है। DPRK शुमाली कोरिया के सरकारी नाम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया का मुखफ्फ है। उनका मजीद कहना था कि DPRK की अपनी दिफाई सलाहियतों के जरिए कायम ताकत का इलाकाई तवाजुन किसी मुसल्ला तनाजे के खतरे को मौसर तरीके से रोकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जौहरी हथियारों की हामिल रियासत के तौर पर शुमाली कोरिया की हैसियत को किसी भी हालत में या किसी भी तरह से तब्दील नहीं किया जा सकता।

0: ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। तवील अरसे तक आमिराना हुक्मरानी के बाद इस्तेहकाम और तरक्की के हुसूल के लिए शाम की कोशिशों की हिमायत की गर्ज से जापान ने उस पर आयद करदा अपनी पाबंदियां जुज़वी तौर पर हटाने का फैसला किया है। हुकूमत जापान ने इस पॉलिसी की मंजूरी मंगल के रोज़ काबीना अजलास में दी। 59 अफराद और 31 इदारे जिन पर असासे मुंजमित करने जैसी पाबंदियां आयद हैं, उनमें से 16 इदारों को पाबंदियों की फहरिस्त से निकाल दिया जाएगा जिनमें मालियाती इदारे और तेल कंपनियां शामिल हैं। काबीना के चीफ सेक्रेटरी किहारा मिनोरू ने नामा निगारों को बताया कि पाबंदियों की फहरिस्त से निकाले जाने वाले कई इदारों से तवक्को है कि वो शाम की तामीर नो में किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि शाम में इस्तेहकाम और तरक्की का ताल्लुक बराह रास्त पूरे मशरक वस्ता के इस्तेहकाम से है। उनका मजीद कहना था कि जापान इस मुल्क की मदद का इरादा रखता है। मगरबी ममालिक में शाम पर पाबंदियों में नरमी का इकदाम जोर पकड़ रहा है। असद खानदान की दो नस्लों की निसफ सदी से ज्यादा मुतकोलिनान हुक्मरानी के दिसंबर 2024 में खात्मे के बाद एक उबूरी हुकूमत शाम की तामीर नो के लिए काम कर रही है। जापानी कंपनियां इंसान नुमा रोबोट के कारोबार को वसत देने के लिए चीनी कंपनियों के साथ इश्तराक कर रही हैं। ये इकदाम ऐसे वक्त में सामने आया है जब चीन में इस टेक्नोलॉजी की तरक्की तेजी से हो रही है। चिप बनाने वाली कंपनी रोनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स ने अगस्त में बीजिंग में तहकीक और तरक्की का एक मरकज कायम किया। जापानी कंपनी चाहती है कि मकामी कंपनियों के साथ मिलकर इंसान नुमा रोबोट्स को कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी तैयार और इसकी आजमाइश की जाए। रोनेसास इलेक्ट्रॉनिक के नायब सदर ईवो मोरोको ने कहा कि चीन का इंतखाब इसलिए किया गया क्योंकि वहां इस शोबे में तेज रफ्तारी से काम करने वाली बहुत सी कंपनियां हैं। उन्होंने कहा कि इसका मकसद इस रफ्तार और मकाम से फायदा उठाना है। मार्च में मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के ने एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी में सरमायाकारी की जो मसनूआत साजी के लिए इंसान नुमा रोबोट बनाती है। रोनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स की कोशिशों का मकसद सनती रोबोट्स तैयार करने में मित्सुबिशी के तजर्बे से इस्तेफादा करना है। जापानी कंपनी का कहना है कि ये रोबोट्स चीन में फैक्ट्रियों में बगैर इंसानी अमले के काम के दौरान मवाद मुंतकिल करने और मसनूआत की जांच कर सकेंगे। इंसान नुमा रोबोट्स की हमवार हरकत यकीनी बनाने के लिए बहुत ज्यादा डेटा की जरूरत होती है, लेकिन कहा जाता है कि इस तरह के अमल में कुछ वक्त लगता है। मजकूरा कंपनियों को उम्मीद है कि चीन की वसी मार्केट में डेटा इकट्ठा करने से तरक्की के अमल में तेजी आएगी।
1: और सामईन, आखिर में आज की अहम खबरों का खुलासा। शुमाली से मगरबी जापान तक के वसी इलाकों में बारिश हो रही है। वसी टोक्यो में मुसलसल 34 दिन बारिश हुई है जो अब तक के रिकॉर्ड पर बरसात की तवील तरीन लहर है। चीन की हुकूमत ने अमेरिका के साथ अपने हालिया तजारती मुजाकरात की तफसीलात जारी कर दी हैं। उसने कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती जंगबंदी में 2 माह तक की तौसी की जाएगी। शुमाली कोरिया के एक सिफारतकार ने कहा है कि जौहरी हथियार रखने वाली रियासत के तौर पर मुल्क की हैसियत नाकाबिले तंसीख है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 29 सितंबर मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। जापान के उत्तर से पश्चिम तक के विस्तृत क्षेत्रों में भारी वर्षा हो रही है। मध्यवर्ती टोक्यो में रिकॉर्ड लगातार 34 दिनों से वर्षा जारी है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी का कहना है कि शरद ऋतु के वर्षा अग्र के कारण होक्काइडो से लेकर क्यूशु क्षेत्र तक के इलाकों में बारिश हो रही है। मुख्य रूप से जापान के पूर्वी प्रशांत तट पर लगातार बारिश जारी है। मध्यवर्ती टोक्यो में मंगलवार को लगातार 34वें दिन बारिश हुई, जो 2019 में बने पिछले रिकॉर्ड से अधिक है। पिछले महीने दक्षिणी खानतो के कुछ हिस्सों और अन्य क्षेत्रों में हुई वर्षा औसत से लगभग 3 गुना अधिक रही। धूप भी सामान्य से कम समय तक रही। मौसम अधिकारी किसानों से फसलों का खास ख्याल रखने का आग्रह कर रहे हैं। चीन सरकार ने अमेरिका के साथ हुई हालिया व्यापार वार्ता के विवरण जारी किए हैं। सरकार का कहना है कि दोनों देशों के बीच कारोबारी तनाव को 2 महीने के लिए और विराम दिया जाएगा। ये बयान अमेरिका की पहले की गई घोषणा की पुष्टि करता है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि वो अमेरिका के साथ कारोबारी तनाव को 10 जनवरी तक विराम देने पर राजी हो गया है। इस विराम की अवधि 10 नवंबर को समाप्त होने वाली थी। मंत्रालय के अनुसार वो वर्षांत से पहले उच्च स्तरीय आर्थिक और व्यापारिक वार्ताओं के माध्यम से इस अवधि को और आगे बढ़ाने के तरीके तलाश रहा है। मंत्रालय का यह भी कहना है कि दोनों पक्ष लगभग 30 अरब डॉलर मूल्य के आयातित सामान पर शुल्क कम करने पर सहमत हुए हैं। लगभग 90% उत्पादों पर शुल्क को सबसे तरजीही प्राप्त राष्ट्र पर लागू होने वाली दरों तक कम किया जाएगा। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने रविवार को अमेरिका चीन व्यापार मंडल के लिए कार्यविधि जारी की। कार्यालय के अनुसार अमेरिका की ओर से वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर तथा चीन की ओर से उप प्रधानमंत्री हो लिफोन इस मंडल का प्रभार संभालते हुए अन्य मुद्दों के अलावा शुल्क कम करने पर चर्चा करेंगे। उत्तर कोरिया के एक राजनयिक का कहना है कि देश का परमाणु अस्त्र संपन्न राष्ट्र का दर्जा अपरिवर्तनीय है। उत्तर कोरिया के विदेश उपमंत्री किम सोन ग्योंग ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए ये टिप्पणी की। किम ने त्रिपक्षीय सुरक्षा सहयोग को लेकर अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया की आलोचना की। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से कोरियाई प्रायद्वीप और उसके आसपास के क्षेत्र पिछले वर्ष की तुलना में अत्यधिक अस्थिरता और बढ़े हुए तनाव का सामना कर रहे हैं और ये स्थिति डीपीआरके के प्रति अमेरिका और उसके समर्थकों की निरंतर शत्रुता तथा लगातार बढ़ते सैन्य टकराव के कारण उत्पन्न हुई है। गौरतलब है कि उत्तर कोरिया का आधिकारिक नाम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी डीपीआरके है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर कोरिया की आत्मरक्षा क्षमता से कायम क्षेत्रीय शक्ति संतुलन प्रभावी रूप से सशस्त्र संघर्ष के जोखिम को कम करता है। उन्होंने बल देते हुए कहा कि उत्तर कोरिया का परमाणु अस्त्र संपन्न देश का दर्जा किसी भी परिस्थिति में या किसी भी तरीके से कभी पलटा नहीं जा सकता।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान ने सीरिया में लंबे तानाशाही शासन के बाद स्थिरता और विकास हासिल करने के प्रयासों में मदद करने के लिए उस पर लगे कुछ प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। जापान सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस नीति को मंजूरी दी। 59 व्यक्तियों और 31 इकाइयों में से 16 इकाइयों को प्रतिबंध सूची से हटा दिया जाएगा। इन पर परिसंपत्तियां फ्रीज करने जैसे प्रतिबंध लगे हुए हैं। इन इकाइयों में वित्तीय संस्थान और तेल कंपनियां भी शामिल हैं। मुख्य कैबिनेट सचिव किहारा मिनोरू ने पत्रकारों को बताया कि प्रतिबंध सूची से हटाई जा रही कई इकाइयों से सीरिया के पुनर्निर्माण में भूमिका निभाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सीरिया में स्थिरता और विकास सीधे तौर पर समूचे पश्चिम एशिया की स्थिरता से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि जापान सीरिया की मदद करना चाहता है। पश्चिमी देश अब इन प्रतिबंधों में बढ़ चढ़कर ढील दे रहे हैं। दिसंबर 2024 में असद परिवार की दो पीढ़ियों के आधी सदी से भी लंबे निरंकुश शासन के पतन के बाद से एक अंतरिम सरकार देश के पुनर्निर्माण में लगी है। ह्यूमनॉइड रोबोट कारोबार में विस्तार के उद्देश्य से जापानी कंपनियां चीनी कंपनियों के साथ साझेदारी कर रही हैं। चीन में रोबोट तकनीक में तेज विकास के बीच ऐसा हो रहा है। चिप निर्माता कंपनी रुनेसांस इलेक्ट्रॉनिक्स ने अगस्त में पेचिंग में एक अनुसंधान एवं विकास केंद्र खोला। ये जापानी कंपनी चीन में स्थानीय कंपनियों के सहयोग से ह्यूमनॉइड रोबोटों को नियंत्रित करने की तकनीक विकसित कर उसका परीक्षण करना चाहती है। रुनेसांस इलेक्ट्रॉनिक्स के उपाध्यक्ष इवो मारोक्को ने बताया कि चीन को इसलिए चुना गया क्योंकि इस क्षेत्र में तेजी से काम कर रही कई कंपनियां वहीं पर हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी का उद्देश्य इस गति और स्थिति का लाभ उठाना है। मार्च में मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक ने विनिर्माण के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने वाली एक स्टार्टअप कंपनी में निवेश किया था। इस साझेदारी में औद्योगिक रोबोट विकसित करने में मित्सुबिशी के अनुभव का लाभ उठाया गया है। मित्सुबिशी का कहना है कि ये रोबोट चीन में कारखानों में मानव रहित संचालन के लिए माल स्थानांतरित करने और उत्पादों की जांच करने में सक्षम होंगे। ह्यूमनॉइड रोबोटों की सुचारू गतिविधियां सुनिश्चित करने के लिए विशाल डाटा की आवश्यकता होती है, लेकिन कहा जाता है कि इस प्रक्रिया में समय लगता है। जापानी कंपनियों को उम्मीद है कि चीन के विशाल बाजार से डाटा एकत्र करने से विकास में तेजी आएगी। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।